जो थर कोर बन हमन दुर पुर काव में चिरगी की उड़ गई चिरगीन हाली अन्ने होरी अन दुर हर गल हर थर कोर की व्यास उसी अन धाल दान हर्षक दुर मर्ग शेष

खुदो अंधी ठेरुला ओका दिरे बिगिने रे नीले थालसा दिरे बिगेतु कंतल बाला दी कोनीरल पतुम पते झाने सारे बेगा हॉसल जानल है पुरजे नुटने नलम